0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। अनमोल विचार।
1: श्रोताओं, आज ईद उल जुहा है। इसे ईद उल अजहा या बकरी ईद भी कहते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वालों का ये एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार त्याग और कुर्बानी का प्रतीक है। अल्लाह के प्रेम व भक्ति की राह पर चलते हुए हमें अपने प्रिय से प्रिय वस्तु, यहाँ तक कि औलाद की कुर्बानी तक करनी पड़ सकती है। यही संदेश आज के इस पवित्र त्योहार का है। अल्लाह की इबादत के लिए हमें अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए।
0: ये था आज का अनमोल विचार। और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।

0: नुसरत वसीम के गाए भजन के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें आंवले की खेती के संदर्भ में। आंवले की व्यावसायिक खेती करने के लिए वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा तैयार पौधों का ही प्रयोग करना चाहिए। आंवले के पौधों को पैबंदी चश्मा विधि द्वारा सुगमतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा तैयार वृक्ष भेंट कलम की तुलना में अधिक लाभकारी पाए गए हैं। चश्मा तैयार करने के लिए ऐसे फल वृक्ष का ही चुनाव करना चाहिए जिसमें से कम 4 से 5 वर्षों तक लगातार अच्छी फसल

0: रही हो। आंवले का वृक्ष बड़े आकार का होता है, अतः इसे वर्गाकार विधि में 10 मीटर पौधे से पौधे व 10 मीटर कतार से कतार की दूरी रखकर लगाना चाहिए। इस प्रकार पौधारोपण से वृक्षों की बढ़वार अच्छी होती है एवं उपज अधिक मिलती है। साथ ही वृक्ष के चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में धूप होती है एवं फलों में बीमारी कम लगती है। रोपाई से पहले उपयुक्त दूरी पर खेत में रेखांकन करके पौध लगाने के स्थान को चिन्हित कर देना चाहिए। इसके बाद चिन्हित स्थान पर 3×3×3 फीट यानी 3 फीट लंबा, चौड़ा तथा इतना ही गहरा गड्ढा बना देना चाहिए। इन गड्ढों में 30 से 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद अथवा कंपोस्ट, 2 किलोग्राम नीम की खली, 1 किलोग्राम हड्डी का चूर्ण या सिंगल सुपर फास्फेट एवं 15 से 20 ग्राम फ्यूरोडॉन अथवा थीमेट का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद इन गड्ढों में आपको पौध लगानी चाहिए। प्रारंभिक 5 वर्षों तक 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट के साथ 100 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सुपरफास्फेट एवं 10 से 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा प्रति वर्ष की दर से देना चाहिए। बड़े वृक्षों में जो कि फल दे रहे हों, 80 से 100 किलोग्राम कंपोस्ट, 300 से 400 ग्राम यूरिया, 800 से 1000 ग्राम सिंगल सुपरफास्फेट एवं 300 से 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वृक्ष प्रति वर्ष की दर से देना चाहिए। आंवले में कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है, अतः कीट और रोगों द्वारा इसे बहुत कम नुकसान होता है। कीटों में खासतौर पर छाल खाने वाले कीट, शूट गॉलमेकर तथा फल भेदक कीट कभी कभी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि बागीचे की समुचित देखभाल की जाए तो छाल खाने वाले कीट एवं शूट गॉलमेकर को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। छाल खाने वाले कीट के अधिक प्रकोप की अवस्था में डाली पर से जालों को साफ करके मोनोक्रोटोफस 8 से 10 मिलीलीटर प्रति लीटर या सेविन या कार्बराइल 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर प्रभावित भाग में ब्रश से लेप लगा दें। मोटे तनों पर बने छिद्रों को ठीक से साफ करके ड्रॉपर की सहायता से पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालकर चिकनी मिट्टी से इन छेदों को बंद कर दें। टहनियों के बड़वार वाले भाग में कभी कभी शूट गॉलमेकर कीट दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में गांठ सहित टहनियों को काटकर जला देना चाहिए। यदि प्रकोप अधिक हुआ है तो इकालक्स 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या सेविन 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। फल भेदक यानी फ्रूट बोरर कीट से बचाव के लिए सेविन 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना लाभदायक होता है। फलों के ऊपर कभी कभी सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में एंडोफिल 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव प्रभावकारी पाया गया है। किसान भाइयों, आंवले में कभी कभी फलन की समस्या आती है, विशेषकर आंवले की बनारसी प्रजाति में। वैसे तो आंवले में नर व मादा दोनों प्रकार के फूल एक ही पौधे में प्रचुर मात्रा में आते हैं, परंतु अच्छे फल एवं पैदावार के लिए आंवले की 2 प्रजातियों को पास पास लगाना लाभदायक होता है। इस तरह साथियों, बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप आंवले की खेती करेंगी तो निश्चित तौर पर आप लाभ उठा सकते हैं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: And said that festival symbolizes devotion, sacrifice, and selflessness. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:11 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज दोपहर 2 स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराजद्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 5:30 पर स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 2 स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

0: एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शनिवार 30 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

आकाश में चमकते सितारे केवल रात को ही रोशन नहीं करते, बल्कि हमारे सपनों, उम्मीदों और भावनाओं को भी उजाला देते हैं। कभी ये सितारे किसी की मुस्कान बन जाते हैं

सितारे हमेशा दूर होकर भी अपने लगते हैं। बचपन में हम आसमान के सितारों को गिनते थे और बड़े होकर अपने सपनों के सितारे तलाशने लगते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा सितारा जरूर होता है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है।

सितारे हमें ये भी सिखाते हैं कि छोटा सा प्रकाश भी गहरे अंधेरे को मिटा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छी सोच, एक प्यारी सी मुस्कान या किसी का साथ जीवन को रोशन कर देता है।

0: तो श्रोताओं, सितारों की तरह चमकते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन के आसमान को उम्मीदों से जगमगाते रहिए। और अब इंद्रधनुष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। इसे प्रस्तुत कर रही थी देविकी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान की 252वीं कड़ी।

अपनी बहन शूर्पणखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पणखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

अभी आप रामचरितमानस गान की 252वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और कविता कृष्णमूर्ति। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपों में कहीं कहीं पर हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं को कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

इस कारण समुद्र अशांत रहेगा। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। आनंद लीजिए देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में सुनिए ईद उल जुहा पर विशेष वार्ता, और उसके बाद पर्यावरण कार्यक्रम में युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विषय पर भेंट वार्ता आप सुनेंगे, और कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के तहत सुनिए चंदना दीक्षित और भूपेंद्र सिंह को 8:30 पर। 9:00 आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में एन रमनी का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन आप सुन सकेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माय चॉइस का समय होगा 10:00। 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1294 कड़ी प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत।

दोपहर 12 बजे होगा तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में बकरीद के विषय पर मिस्टर बी अब्दुल राजिद से की गई वार्ता आप सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर और प्रद्युमन शर्मा को आप सुन पाएंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1:30 पर।

2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। बहारों के शाम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 4:45 पर। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में नारियल और सुपारी बागान इस विषय पर श्रीमती लुसियाना खजूर से की गई बातचीत आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम महफिल्ले कवाली होगा 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं दी जाएगी 7:15 पर। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 2.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 89% तथा न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:54 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39।

श्रोताओं लीजिए सुनिए, अब एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से श्री विजयपुरम आने वाला विमान उड़ान संख्या 2937 सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 सुबह 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशासन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। ईद उल जुहा के अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह पवित्र त्यौहार निस्वार्थता, करुणा और मानवता की सेवा के मूल्यों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने का आग्रह किया है। वाहनों के लोड की प्रभावी निगरानी व विनियमन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक किया जा सकता है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। ईद उल जुहा के अवसर पर दीपो के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने दीपवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पवित्र त्यौहार निस्वार्थता, करुणा और मानवता की सेवा के मूल्यों का प्रतीक है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार भाईचारे, सामाजिक सद्भाव तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बंधनों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। उपराज्यपाल ने लोगों से ज़रूरतमंदों की मदद करने और क्षमा, उदारता तथा आपसी सम्मान के शाश्वत आदर्शों को बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराने की अपील की। अंडमान टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी बकरीद के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के तहत एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने का आग्रह किया है। खाद्य तेल का अत्यधिक सेवन और खाना पकाने के तेल का बार बार उपयोग करने से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, फैटी लीवर और अन्य पुरानी बीमारियाँ हो सकती है। इस सिलसिले में दीपवासियों को अपने दैनिक खाद्य तेल के उपभोग में कम से कम 10% की कटौती करने और स्वस्थ खानपान की आदतों को अपनाने की सलाह दी गई है। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए नागरिकों को कम मात्रा में तेल खरीदने, मापने वाले चम्मच का प्रयोग करने, बदल बदल कर तेल का उपयोग करने, तेल का दोबारा उपयोग ना करने, मक्खन और घी सीमित करने, तले हुए और फास्ट फूड से बचने, भोजन बनाने का तरीका बदलने और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई है। श्रीविजयपुरम नगरपालिका परिषद ने क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए जहाजरानी सेवा निदेशालय के सहयोग से जलापूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से अतिरिक्त कदम उठाए हैं। वर्तमान में जल की कमी को दूर करने के लिए इन अस्थायी सहायक व्यवस्थाओं के हिस्से के रूप में लिटिल अंडमान में श्री विजयपुरम तक जहाज द्वारा पानी लाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल एमवी सेंटिनल से कुल 90 टन पानी लंबालाइन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा गया। नगरपालिका परिषद द्वारा जहाज के माध्यम से लाए गए कुल 231 टन पानी को अब तक एकत्र किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, प्रवर्तन अभियान और पुरस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। वाहनों के लोड की प्रभावी निगरानी व विनियमन सुनिश्चित करने के, ओवरलोडिंग को रोकने और सड़क बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर ट्रकों और अन्य परिवहन वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच के लिए एक प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान वाहनों की औचक रूप से जांच की जाएगी। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि उल्लंघनकर्ताओं को विभाग लिखित आदेश देकर चालक को अपने जोखिम पर अतिरिक्त वजन उतारने का निर्देश दे सकता है। ऐसा नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत उचित जुर्माने का प्रावधान है। अब तक ओवरलोडिंग के लिए 29 वाहनों की औचक जांच की जा चुकी है। विभाग ने एक बार फिर सभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, वाहन मालिकों और चालकों से निर्धारित लोड सीमाओं और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। यह देखा गया है कि अंडमान ट्रंक रोड से गुजरने वाले मालवाहकों में ओवरलोडिंग के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। विभाग आम जनता, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक मालिकों, चालकों और अन्य सभी हितधारकों को ऐसे मोटर वाहन को चलाने की अनुमति नहीं देगा जिसमें उस वाहन के लिए निर्धारित स्वीकार्य सकल वाहन वजन या एक्सेल वजन से अधिक लोड ले जाया जा रहा हो।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में द्वीप समूह के पात्र व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, संस्थानों, नियोक्ताओं, पुनर्वास पेशेवरों, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों और अन्य हितधारकों को संबंधित पुरस्कार श्रेणियों के तहत आवेदन करने या योग्य उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों की उत्कृष्ट उपलब्धियों और उनके सशक्तिकरण व समावेशन की दिशा में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 31 जुलाई तक खुला रहेगा। विस्तृत दिशा निर्देश और अन्य जानकारियां राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति समाज कल्याण निदेशालय से भी संपर्क कर सकते हैं। विद्युत विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन शिक्षु संशोधन अधिनियम 1961 और इसके संशोधनों के तहत विभिन्न विषयों में एक वर्ष की अवधि के लिए संबंधित श्रेणी में डिग्री या डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए पात्र है। उम्मीदवार योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 3 वर्ष की अवधि के भीतर इस योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300 और डिप्लोमा अप्रेंटिस को 10,900 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। उम्मीदवार nats.education.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवारों को विद्युत विभाग द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिसशिप अवसरों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो 7 जून तक उपलब्ध रहेगा। कलिकट विश्वविद्यालय से संबद्ध फारूक कॉलेज कोझिकोड में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वीप समूह के मूल निवासी छात्रों के लिए 1-1 सीट आरक्षित की गई है। कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से कॉलेज के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। फारूक कॉलेज में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पोर्टल पर भी पंजीकरण करना अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई है। उम्मीदवारों से अपने आवेदन के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज, विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया और फारूक कॉलेज प्रवेश पोर्टल पर किए गए पंजीकरण का प्रमाण पत्र सचिवालय के विकास अनुभाग 4 में 5 जून तक जमा करने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईद उल जुहा के अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह पवित्र त्यौहार निस्वार्थता, करुणा और मानवता की सेवा के मूल्यों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने का आग्रह किया है। वाहनों के लोड की प्रभावी निगरानी व विनियमन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 जुलाई तक किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

0: श्रोताओं, देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में दिखाई देती है। जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। देश के प्रति इसी अटूट निष्ठा और जुनून को दर्शाता यह प्रेरणादायक गीत अब प्रस्तुत है।
1: नफरत

श्रोताओं, हमारा भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के लोगों का अपने वतन के प्रति प्रेम। यह देश हम सबकी शान है, हमारी पहचान है। आइए इसी भावना को दिल से महसूस कराता यह अमर गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विविधता में छिपी हुई है। अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज और संस्कृतियों होने के बावजूद हम सबको एक सूत्र में बांधती है हमारी हिंदुस्तानी पहचान। इसी गर्व और अपनापन से भरा यह लोकप्रिय गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, इन्हीं देशभक्ति की भावनाओं के साथ आज का यह विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। लीजिए पहले सुनिए ईद उल जुहा पर विशेष वार्ता, ईद उल जुहा की अहमियत विषय पर पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार है अब्दुल सलाम।
1: ईद उल अज़हा का त्यौहार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। आज से 4000 साल पहले इराक में

0: यही एक सूरत थी कि वह अपने देश से निकल जाने के एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाना छोड़ देता। निजी तौर पर अगर एक अजनबी आदमी किसी मजहब का मानने वाला होता तो दूसरे देशों के लोग उसे यूं ही बिला वजह छेड़ने की तकलीफ क्यों करते, बल्कि उन्हें क्या पड़ी थी कि उसका मजहब मालूम करते। मगर यह खुदा का बंदा दूसरे देशों में भी जाकर खामोश ना रहा। वो जहां भी गया उसने खुदा के सब बंदों को यही दावत दी कि दूसरों की बंदगी छोड़ो और सिर्फ इसी एक खुदा के बंदे बनकर रहो जो हकीकत में तुम्हारा खुदा है। इस दावत और प्रचार का नतीजा यह हुआ कि अपने देश से निकलकर भी उसे कहीं चैन से बैठना नसीब ना हुआ। कभी सीरिया में है तो कभी फ़लस्तीन में, कभी मिस्र में है तो कभी हिजाज में। इस प्रकार सारी उम्र यूं ही देश की खाक छानते गुजर गई। उसको आराम के ठिकाने की चाह न थी, उसको घर, खेत और मवेशी और कारोबार की तलब न थी, उसको दुनिया के ऐश और ज़िंदगी के सरो सामान की चाह न थी। उसे सिर्फ इस चीज़ की तलब थी कि जिस हक पर वह ईमान लाया है उसका बोलबाला हो और तमाम इंसान गुमराही को छोड़कर उस सीधी राह पर चलने लगे जिसमें उनका भला है। यही तलब और यही कामना उसे जगह जगह लिए फिरती थी और इसी तलब और फिक्र के पीछे उसने अपने हर फायदे को त्याग दिया। यही उसकी तीसरी बड़ी कुर्बानी थी। इस खानाबदोशी और बेसरो सामानी की हालत में फिरते फिरते जब उम्र ख़त्म होने को आई तो खुदा ने उसे एक बेटा दिया। उस बच्चे को पाला पोसा यहाँ तक कि वह उस उम्र को पहुँचा जब औलाद माँ बाप के कामों में उनका हाथ बटाने और ज़िंदगी की दौड़ धूप में उनका साथ देने के लायक होती है। बेटा और वह भी इकलौता बेटा, फिर नौजवानी की सीमा को छूता हुआ और बाप जिंदगी की उस मंजिल में जबकि आदमी जवान औलाद के सहारे का सबसे ज़्यादा मोहताज होता है। हर आदमी इस स्थिति को सामने रख कर अंदाज़ा कर सकता है कि उस बाप को वो बेटा कितना प्यारा होगा, मगर मुस्लिम के मायने ये है कि उसे खुदा और उसकी मर्ज़ी से बढ़कर कोई चीज़ भी प्यारी ना हो। इसलिए वह सारी कुर्बानियाँ भी काफ़ी ना समझी गई जो ये बंदा अपने खुदा के लिए जीवन भर करता रहा था। इन सब के बाद उनका आखिरी इम्तिहान लेना ज़रूरी समझा गया और वह यह था कि यह मुस्लिम बंदा अपने इस सबसे प्यारे बेटे की मोहब्बत को भी खुदा की मोहब्बत पर कुर्बान कर सकता है या नहीं। अतः यह इम्तिहान भी ले डाला गया और दुनिया ने देख लिया कि वह बूढ़ा इंसान अपने खुदा का खुला हुक्म नहीं बल्कि सिर्फ़ एक इशारा पाते ही अपने इकलौते नौजवान बेटे को खुद अपने हाथ से बलि देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन खुदा ने बिल्कुल बलि के वक्त लड़के की जगह बकरे को कबूल कर लिया, क्योंकि खुदा को लड़के का खून नहीं चाहिए था बल्कि उसे तो सिर्फ मोहब्बत की आजमाइश करनी थी। लेकिन खुदा के इस सच्चे बंदे ने अपनी नीयत की हद तक तो अपने जिगर का टुकड़ा अपने खुदा के इशारे पर कुर्बान कर ही दिया था। यह थी वो आखिरी और सबसे बड़ी कुर्बानी जिसे उस शख्स ने अपने इस्लाम और ईमान और खुदा के साथ अपनी वफादारी के सबूत में पेश किया था। इसी के बदले में खुदा ने उसे तमाम इंसानों का इमाम बनाया और अपनी दोस्ती के पद से सम्मानित किया। पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यही वो कुर्बानी है जिसकी यादगार में दुनिया भर के मुसलमान ईद उल जुहा का त्यौहार मनाते हैं और जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इस यादगार के मनाने का मकसद यह है कि इंसान के अंदर कुर्बानी की वही रूह, इस्लाम और ईमान की वही कैफियत और खुदा के साथ मोहब्बत और वफादारी की वही शान पैदा हो जिसका नमूना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पेश किया। अगर कोई शख्स केवल एक जानवर के गले पर छुरी फेरता है और उसका दिल इस रूह से खाली रहता है तो वह नाहक एक जानवर का खून बहाता है। वहाँ तो जो चीज़ चाहिए वह दरअसल यह है कि जो शख्स कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह पर ईमान लाए वह पूरे तौर पर हक का बंदा बनकर रहें। कोई पक्षपात, कोई दिलचस्पी, कोई निजी फ़ायदा, कोई दबाव और लालच, कोई डर और नुकसान, गरज कोई अंदर की कमज़ोरी और बाहर की ताकत उसको हक के रास्ते से ना हटा सकें। वह खुदा की बंदगी का इकरार करने के बाद फिर किसी दूसरी चीज़ की बंदगी कबूल ना करे मगर उस संबंध को कुर्बान करना किसी तरह मुमकिन ना हो जो उसने अपने खुदा से जोड़ा है। इस्लाम कहते हैं ऐसी कुर्बानी को। आज हर ज़माने से बढ़कर हम इसके ज़रूरतमंद है कि कुर्बानी की यह रूह हमारी ज़िंदगियों में जगह पा ले। यही ईद उल जुहा का पैगाम है।
1: श्रोताओं अब लीजिए सुनिए पर्यावरण कार्यक्रम के तहत युवाओं में

0: प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विषय पर डॉक्टर मंजू नायर के साथ पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता।
1: पर्यावरण कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट और घटते हरित क्षेत्रों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है। प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की भी नींव है। ऐसे में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम अपने युवाओं को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बना रहे हैं? क्या बच्चों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने की प्रेरणा दी जा रही है? इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में भूगोल विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर को। डॉक्टर मंजू, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता कैसे विकसित की जा सकती है और इसमें स्कूल, परिवार और समाज, इसकी क्या भूमिका हो सकती है?
2: जी, आपने बहुत अच्छी बात ये उठाई कि प्रकृति और संवेदनशीलता, ये जो शब्द आपने संवेदनशीलता शब्द का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इमोशनल कनेक्ट हम अपने पर्यावरण के प्रति रखते हैं वो इस मशीनीकृत जिंदगी में मानव के साथ इंसानियत जो होनी चाहिए, मानवतावाद जो होनी चाहिए, मानव के प्रति मानव का भाव होने चाहिए, प्रकृति के प्रति मानव के जो विचार हैं, भाव हैं, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है। और इस परिवर्तन का परिणाम है कि जितना हार्म हम पहुंचा रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं हम विचारों के माध्यम से हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी प्रकृति के प्रति। तो इसलिए जो इमोशनल कनेक्ट है उसकी बढ़ोतरी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये जो कृत्रिम जीवन मनुष्य अब जीने लगा है तरक्की के नाम पर, वो कृत्रिमता मनुष्य के जीवन में एक अभिशाप बनती जा रही है। प्रकृति से दूर मनुष्य होता जा रहा है। तो ये जो वास्तविकता है उसको समझाना है और अपने चारों ओर के जो पंच महाभूत हैं, जो कि अपने जीवन को सफल बनाती है, जिंदगी को बरकरार रखती है, पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखती है, उसके लिए कामयाब तरीके से उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के प्रति अपना एक इमोशनल कनेक्ट रखें और प्रकृति के प्रति हम काफ़ी संवेदनशील रहें।
1: जी, स्कूल, परिवार और समाज की बात हम बाद में करेंगे, इससे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता शुरुआत बचपन से कैसे की जा सकती है, पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है इसमें?
2: जी, ये बात यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारी जो प्रकृति है उसमें जैसे जल है, पर्यावरण है, हमें जो भोजन मिल रहा है और बहुत ही प्राकृतिक तरीके से जो भी वस्तुएं हमारे पास पहुंच रही है, उस पर तकनीकी का प्रभाव, साइंस का प्रभाव और साथ ही साथ जो उत्पादकता से संबंध बातें हैं उसका प्रभाव, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुआ है उसका प्रभाव, और सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता के लिए जो साइंटिफिक तरीके हमने अपनाए हैं वो खासकर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की वजह से, उन सब का प्रभाव जो है वो बहुत अधिक बड़ा है हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आज हम बात करेंगे डिग्रेडेशन के बारे में। हम ये नहीं बात करते कि समस्याएं कैसी आई, लेकिन उन समस्याओं का परिणाम उसके विषय में मैं कहना चाहूँगी कि डिग्रेड होता जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी उत्पादकता बहुत अधिक व्यापारिक स्तर पर किया है, हमें आवश्यकता से अधिक चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम चीज़ों को डंप करते जा रहे हैं। हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में जानकारी कम है, हमारे पास जो वस्तुएं हमें त्याग करनी चाहिए उसको कहाँ त्यागे इसके बारे में जानकारी कम है, जो पहाड़ बन रहे हैं जिसमें कि वेस्ट डिस्पोजल प्रबंधन हमें पता नहीं है, तो हम प्लास्टिक का जो उपयोग हमने किया है उससे अपने पर्यावरण को हम विनाश के कगार पर खुद ला रहे हैं। तो उस डिग्रेडेशन के बारे में जानकारी देना, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए हैबिट डेवलप करना, और वो हैबिट बचपन से ही बच्चों में, परिवार में, स्कूल में उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। जैसे कि डस्टबिन रखना, या जो दो तरह

0: डिब्बे, गीला कचरा, सूखा कचरा, इसके बारे में जानकारी देना।
1: जी
0: अगर आप गंदगी फैला रहे हो तो वो आप तक सीमित नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ रहा है। इसके विषय में बोध कराना और एक क्लीनलीनेस का स्वभाव, जो कि स्कूल में भी, घर में भी, खुद अपने जीवन में भी अपनाने की आवश्यकता बहुत अधिक हो गई है। और ये जिम्मेदारी या किसी फोर्स के द्वारा हम नहीं कर सकते, उसको अपने आप अपने में लागू करना है, तभी सफलता होगी। और ये बचपन से ही इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। आपका प्रश्न था कि परिवार, समाज, छोटे बच्चों पर कैसा, तो ये अगर हम बचपन से सीखा तो आदत में आ जाएगी, और जब आदत में आएगी तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता।
1: डॉक्टर मंजू, आप क्या ऐसा नहीं मानती कि अगर पेरेंट्स बागवानी में रुचि रखते हैं
0: जी
1: तो वो चीज़ बच्चों में आती है और वो बचपन से ही उनमें पेड़ पौधों के प्रति, प्रकृति के प्रति एक लगाव होता है?
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि उस पौधे को सींचना, उस पौधे को बड़ा करना, उस पौधे में रंग फल फूल जो उत्पन्न होते हैं उसको देखना,
1: देखना जी
0: समझना, उसको उपयोग में लाना, और ये सब हर्ष खुशी, और मैं कह सकती हूँ कि एक, जैसे अभी आपने संवेदनशीलता की बात कही, एक भावनात्मक स्तर पर वो परिवार अपने बच्चों के साथ उससे जुड़ जाता है। वो चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे किसी भी प्रकार
1: जी
0: का, कोई बागवानी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, कोई
1: जी
0: छोटा सा पॉटेड, अब तो शहरों में लोग रहने लगे हैं, पॉटेड भी कोई प्लांट लगा रहे हो, तो सबका प्रभाव तो अवश्य पड़ता है। और जब उसको ड्राइंग बनाने को दिया जाता है तो वही
1: वही
0: चित्र
1: चीज
0: बनाता
1: बनाते
0: है
1: हैं।
0: जो
1: जी
0: माँ ने
1: जी
0: वो पर्पल
1: जी
0: कलर
1: जी
0: का फूल उगाया होगा।
1: जी जी तो
0: जी
1: ऐसे में उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं
0: जी
1: है, वो देख के सीखते
0: जी
1: जाता है।
0: पहला गुरु, पहला शिक्षक तो माँ, और उसके बाद उनका परिवार, फिर
1: जी
0: स्कूल में जब आते हैं तो वो फिर उनके सहयोगी मित्र और पीयर ग्रुप का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और आजकल हमारा सिलेबस इतना बढ़िया, करिकुलम और सिलेबस में बातें हैं कि बहुत सब कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मैं कुछ बातें यहाँ कहना चाहूँगी एक शिक्षिका के नाते, जिसमें मैं बहुत लंबा लिस्ट भी आपको दे सकती हूँ, जैसे क्वीज़ करवाना,
1: जी
0: अपने चारों तरफ के पर्यावरण के विषय में जानकारी देने के लिए। बच्चों में ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला काम बहुत अच्छे तरह रिश्ता है, वो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि
1: जी
0: वो खुद तैयारी करते हैं चारों तरफ क्या है, कुछ भी प्रश्न आपने बनाया प्रकृति
1: जी
0: पे। इसके साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन युवाओं में खासकर, कि आप इस टॉपिक पे बना के लाइए, साथ ही साथ जो है कैंपस और स्टूडेंट, उनका रिलेशन कैसे, अपने कैंपस को आप कैसे स्वच्छ और सुंदर और हरा भरा रख सकते हैं, या फिर इन सब के बावजूद ऐसे कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, आजकल बहुत ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा देता है कि आपके पास वेस्ट है तो उसमें से कैसे डेकोरेटिव चीज या कुछ ऐसी चीजें तैयार हो जो इसके बारे में जानकारी दे, और जैसे फ्लोरल आर्ट है, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हैं,
1: जी
0: और फिर आजकल एग्जीबिशंस में अनकुक्ड फूड का भी, कि आप फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, कैरेट है या फिर आपके पास में सब्जियां हैं
1: जी
0: जिसको कि ना बॉईल करने की जरूरत ना पकाने की, आप उसको कंज्यूम करो। और साथ ही साथ अब माइक्रोबायोम की बातें बहुत आ गई है, जैसे दही जमाने की बात है जो आपके आंत के लिए भी अच्छी है, पेट के लिए भी अच्छी है, तो उन चीजों के विषय में जानकारी दे। जैसे कि हमने मिलेट्स के लिए बहुत कहा कि ये श्री धान्य है, तो वैसे ही अब माइक्रोब्स के बारे में बच्चों को, ऐसे फूड कौन से जो प्रोबायोटिक हैं, उनकी बेनिफिट्स के बारे में जानकारी लोग ले रहे हैं। और वेजिटेबल कार्विंग करना या सोशल फॉरेस्ट्री करना बहुत प्रचलित हो गया है। और साथ ही साथ गार्डनिंग, गार्डनिंग का आपने पहले भी मेंशन किया था, अब हम गांव को चुन रहे हैं, स्कूलों में सिलेबस में निर्धारित किया गया कि आप गाँव चुने, तो वो टीचर्स के साथ जाते हैं गाँव, गाँव वालों के साथ मिलकर वहाँ गार्डनिंग करना, फार्मिंग में जाना, गाँव की
1: जी
0: समस्याओं के बारे में जाना, सफाई के लिए वहाँ जाना, बीच को क्लीन करना, मतलब बड़ी सारी जिम्मेदारियां इन सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो बच्चे ग्रुप में जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत कुछ सीख के आते हैं।
1: जी
0: कभी कभी तो उस गांव के बारे में पूरी जानकारी, वो सजेशंस भी देते हैं। बहुत सारी बातें अब सामने आ रही हैं जिन सब का प्रभाव बच्चों पर, युवाओं पर और गांव वालों पर और पूरे समाज पर पड़ रहा है।
1: चूंकि आप एक शिक्षिका हैं, आप युवाओं को पढ़ाती हैं, तो बच्चों में, युवाओं में कितना इंटरेस्ट है प्रकृति को लेकर?
0: जी जब तक आप सिलेबस देते हो, करिकुलम बताते हो और कंजर्वेशंस के टिप्स और पॉइंट्स लिखवाते हो, पढ़वाते हो, याद करवाते हो, एग्जाम तक ले जाते हो,
1: जी
0: उसमें तो सफलता मिल ही जाती है, वो भले ही थोड़ी नीरस है, लेकिन जैसे ही आप लैब टू लैंड बाहर
1: जी
0: निकलते हो तब आप उनका जोश देखिए, क्योंकि मनुष्य चाहता ही है कि वो प्रकृति में रहे, कहीं कृत्रिमता उनको चाहिए नहीं कि वो
1: जी
0: एसी कमरे में बैठे हैं या फैन के नीचे बैठे हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनमें अलग ही रौनक आती है, और जो खुद लर्न किया हुआ एक्सपीरियंस अनुभव है वो
1: जी
0: जिंदगी भर भूलते भी नहीं है, उनको अपनाते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और पास जाकर अगर एक कीड़ा है तो वो क्या कर रहा है, क्या वो परागण में साथ देता है, एक तितली उड़ी तो कैसे उड़ी, उसके

0: का क्या महत्व है, तितली क्यों है एनवायरमेंट में, एक स्पैरो है तो ये सिद्ध करता है कि स्पैरो वहां इसलिए है क्योंकि वहां एनवायरमेंट शुद्ध है, अगर वो शुद्ध नहीं है तो चिड़िया भी वहां नहीं रहेगी। तो ऐसी हर चीजों के विषय में जानकारी पास जाकर, छू कर, समझ कर, अपने आप खुद एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पे लर्न करना, ग्रुप में लर्न करना, खुशी खुशी लर्न करना, जो चीजें भूलती नहीं है। और ये प्रयास बहुत सफल हो रहा है कि बच्चे जो है स्कूल कंपाउंड से बाहर आ रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं। मैं तो एग्जांपल देना चाहूंगी, केरल मलाबार तट का एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे के पूरा स्कूल खेती बाड़ी में भी लगा है, उनको स्कूल आवर के बाद मौका दिया गया, वो उगा रहे हैं चावल के साथ सब्जियां, और ये उगता है सीजन में, तब कटता है जबकि त्योहार फसल कटाई का ही त्योहार ओणम है, और पूरे गाँव वालों को स्कूल जो है वो वेजिटेरियन डाइट के लाना होता है पत्ते में, और ये पूरे स्कूल से ही बच्चे ही करते हैं, बड़ी खुशी खुशी वो इंतजार करते हैं कि कब ये आएगा, और हर क्लास का नियम जैसे टाइम टेबल होता है वैसे खुद वो ऑफर करते हैं, अपने घर से वो चारा लाना, बनाना, सब कुछ करना, और उसके बाद वो उसके फ्रूट को खुद पकाना, खिलाना, ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी। तो पूरा स्कूल राउंड द ईयर उनके बाकी टाइम टेबल में ये भी लगा, और बड़ी सफलता से बच्चे लर्न कर रहे हैं कि कैसे खेती की समस्याएं क्या है, कौन सा कीट पतंग आ रहा है। मैं कहूँगा तो बहुत सारी बातें हैं, और जब स्वयं, क्योंकि बहुत बार माता पिता सोचते हैं अरे बच्चों से कुछ नहीं करवाना, खेलना भी नहीं, उनको छोड़ना, बस पढ़ते रहना, ऐसा नहीं है। अगर इसमें समय देंगे तो उससे जो लर्निंग आती है वो तो जीवन पर्यंत रहने वाली है।
1: डॉक्टर मंजू, ये डिजिटल युग में आज युवा बच्चे मोबाइल और इंटरनेट में अधिक व्यस्त रहते हैं, ऐसे में उन्हें प्रकृति से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?
0: जी, एक तो अब मैनेजमेंट की बात भी बहुत आगे आ गई है, और आपने कहा कि बच्चे जो मोबाइल का स्क्रीन देखना, लैपटॉप का स्क्रीन देखना, टीवी का स्क्रीन देखना, कमरे में बंद रहना, और पास आपके पेरेंट्स बैठे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, तो भी सब अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जम, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें से आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी टाइम टेबल बनाएं, अपने लिए समय निकालिए कि आप पर्यावरण से कब जुड़ते हो, कितना स्क्रीनिंग का टाइम आप अपने लाइफ में इन चीज़ों के लिए दे रहे हो, और कितना टाइम आप नेचर के साथ जुड़ने के लिए दे रहे हो। आप उन बातों को भी सीख सकते हैं, स्क्रीन भले ही देख रहे हो, कि मैनेजमेंट के तरीके क्या है, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ क्या है, जो पर्यावरणीय संसाधन हमारे चारों तरफ है, जिन पर थ्रेट है। अगर आप यही देखते रहेंगे तो वो थ्रेट आपके कमरे में आके आपको ही प्रभावित करेगा, तो बेटर है उन प्रभावों से बचने के लिए, जैसे कोजियर नामक व्यक्ति ने 1971 में कहा कि इन्वेंट्री बनाइए, तो उन इन्वेंट्रियों के बारे में जानकारी दीजिए, लीजिए, और साथ ही साथ जो पर्यावरण दिवस है या 5 जून हमारा एनवायरमेंट डे है, अर्थ डे अभी हम मनाने वाले हैं 22 अप्रैल में, तो ये सब दिवस जो आते हैं उनकी महत्ता को जाने और उसके लिए कुछ प्रयास करे आपके ग्रुप द्वारा, आपके फ्रेंड्स द्वारा।
1: अंत में हमारे जो युवा इस समय आपको रेडियो के माध्यम सुन रहे हैं, उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जानकारी तो सब जगह से मिल जा रही है, लेकिन उसके अनुकूल समाधान क्या है इसके बारे में भी जानकारी लें, और सचेत रहें अपने पर्यावरण के बारे में, जो ज़रूरत है उसके लिए कदम मिलाएं, आगे बढ़े। आज भी ज़रूरत है कि आप मिलजुल कर रहें और इन समस्याओं को जूझते हुए आगे निकले और एक जिम्मेदार नागरिक बनाए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा।
1: तो डॉक्टर मंजू, हम समझते हैं जिन युवाओं ने इस समय आपको सुना है वो ज़रूर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनेंगे और इसके संरक्षण में अपना योगदान अवश्य देंगे। आज आप कार्यक्रम में आई, समय दिया आपने, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप पर्यावरण कार्यक्रम के तहत युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विषय पर डॉक्टर मंजू नायर के साथ पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थी जयशीला।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
8: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। श्रोताओं, तुमको ना भूल पाएंगे, आइए सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है जलीस राशिद ने, स्वर बनाई है साजिद वाजिद ने और गायक कलाकार है सोनू निगम और अरविंदर सिंह।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजे हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएफ

0: इसको जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की

0: जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रूपीज़।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है आपके भरपूर मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म देश के दुश्मन से, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। गीत रचना वर्मा मलिक की और संगीत दिया है सोनिक ओमी ने।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा

0: कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अगला गाना जो आप सुनेंगे, इसको आवाजें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। गाने के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है RD बर्मन ने।

0: On the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: हसरत जयपुरी का लिखा हुआ सी रामचंद्र का संगीतबद्ध, श्रोताओं सुनिए रूठा ना करो फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए फिल्म चौदविन का चांद का गीत रचना शकील बदायूनी की और संगीत से सजाया है रवि ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म याराना का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, गीत रचना अनजान की और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत इस अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एन रमनी का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन। इनके साथ वायलिन पर MS गोपालकृष्णन, मृदंगम पर बल्लूर रामा भद्रम और कंजीरा पर श्याम सुंदर ने संगति की है। तो लीजिए पहले सुनिए एन रमनी का बांसुरी पर बजाया राग मध्यमावती, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति श्यामा शास्त्री की।

अंत में सुनते हैं एन रमणी का बांसुरी पर बजाया राग रविचंद्रिका, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति त्यागराजा स्वामी की।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप एन रमणी का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब आरंभ होता है कार्यक्रम SMS माई चॉइस।

SMS My Choice कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्ती तो एक झोंका है हवा का, दोस्ती तो एक नाम है वफा का, औरों के लिए चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए तो दोस्ती हसीन तोहफा है खुदा का। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आपका SMS जो हमें तुसनाबाद से प्रियंका और शरीफ ने भेजा है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत जो फिल्म तुमको न भूल पाएंगे से लिया है, सोनू निगम और अरविंदर सिंह का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपको इनकी पसंद पर ये गाना।

अगले गीत के लिए हमें एसएमएस किया है बुनियादाबाद से विक्की, बेला और शबनम ने। ये सुनना चाहते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ फिल्म जालिम का ये गीत। जफर गोरखपुरी के बोल को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकद्दर का ये गाना। प्रकाश मेहरा के गीत को संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी। सुनने वाले श्रोता है शादीपुर से नवीन, रोशन, संदीप और अंजलि। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

हेडो से शीतल और जिया ने हमें एसएमएस किया है फिल्म फकीरा के इस गीत के लिए, जिसे गाया है किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, अजीज़ नजान और भूषण मेहता ने। गीत व संगीत रविंद्र जैन का है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर यह गाना।

0: 哎，
1: श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस जारी रहेगा। इस सूचना के बाद लीजिए सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया गया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशासन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम SMS माई चॉइस में आपका पुनः स्वागत है। लीजिए अब सुनिए टेरलाबाद से संतोष, शोभना, श्रीजा और लवी की पसंद पर फिल्म यारी जिंदाबाद का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और उषा मंगेशकर और साथियों ने। एम जी हसमत के गीत को संगीत दिया है सोनिक ओमी।

मैं तो मरूंगी उससे, मोहब्बत करूंगी उससे, जो शोला ज्यादा भड़के वो जल्दी बुझ

काम सब तोड़ दूंगी, नखरानी छोड़ दूंगी, सर तेरा फोड़ दूंगी, गर्दन मरोड़ दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर छोड़ूंगी। अरे लेके टक

तुलसी कुमार और गजेंद्र वर्मा के गाए गीत को सुनने के लिए हाबड़ीपुर से राहुल और रोहन ने हमें एसएमएस किया है। फिल्म है यारियां, गीत व संगीत मिथुन का है।

सृष्टि नगर से जावेद सुलेखा और अजय ने हमें एसएमएस किया है फिल्म जुबैदा के इस गीत के लिए। गायिका है अलका याग्निक, गीत जावेद अख्तर का तथा संगीत ए आर रहमान का।

हंस राज हंस और श्वेता सेट्टी के गाया गीत फिल्म बिच्चू के लिए हमें SMS किया है प्रातरापुर से विजेता लाल और आदिलाल ने। गीत समीर का तथा संगीत आनंद राज आनंद का है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

प्रेमनगर से हसीना और इशाद अली ने हमें SMS किया है फिल्म प्यार झुकता नहीं का इस गीत के लिए। गीत को गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। SH बिहारी के बोल को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1294 कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे कैसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं, अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
0: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम

0: बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

0: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखूं तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं,
6: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
7: माँ,
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से 3-3 फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
1: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया

0: 1999 का साल, कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
1: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
1: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थी।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगीं और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।

0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: कालिका माता की जय।
2: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।
2: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय।
3: भारत माता की जय।
2: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
0: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
2: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार

0: अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1294 कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए फिल्म कुंवारा बदन के एक गीत के साथ। राजेंद्र किशन के एक बोल को सुरों में पिरोया है घनश्याम ने।

जसपाल सिंह को सुनिए फिल्म शाम तेरे कितने नाम में। अनजान के लिखे गीत को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

मन का बंधन सच्चा, मन से मन का बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे।

लीजिए अब सुनिए सरदार मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार मजाज की गीत रचना। गायक है तलक महमूद तथा फिल्म है ठोकर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वरों में सुनते हैं फिल्म दूज का चांद का ये गाना। साहिर लुधियानवी के गीत को संगीत से सजाया है रोशन ने।

लता मंगेशकर को अभी आप फिल्म साजन में सुन रहे थे। गीत आनंद बख्शी का था तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म तूफान में प्यार कहाँ। फिल्म में प्रेम धवन के गीत को संगीत से सजाया है चित्रगुप्त ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म गोपी चंद जासूस का ये गीत, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत उषा खन्ना का है तथा फिल्म गायिका है लता मंगेशकर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे है, लीजिए अब सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री

0: सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Gala on the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
1: होगा। Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULLAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the Education Minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले।
4: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज। द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली। दिस इज अ प्रोविजन अंडर द ओएसएम सिस्टम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सीबीएसई हैज इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम। सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली। वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड।
1: The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates, whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month, will be released soon. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will submit his resignation to the governor.

अभी आप प्रद्युम्न शर्मा की आवाज़ में मोइन नज़र का कलाम सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाज़ में ये गज़ल।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर और प्रद्युम शर्मा की आवाज़ों में चंद गज़लें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में पहले है लेते हैं पहला मैसेज जो हमें डंडस पॉइंट से भेजा है महेश परवेश और सुदीप्ता ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कच्चे धागे का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। आनंद बख्शी के बोल को सुरों में पिरोया है नुसरत फतेह अली खान ने।

सोलवे से फिल्म काला बाजार के गीत को सुनना चाहते हैं रफ़ी, सलाम और नाजिया। गायक है मोहम्मद रफ़ी, गीत शैलेंद्र के तथा संगीत SD बर्मन का। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

लीजिए अब सुनिए तुम बिन फिल्म का ये गाना। गायक कलाकार है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण। सुनने वाले श्रोता है भातु बस्ती से पूजा, मनीषा और कृतिका। गीत फैज अनवर के हैं तथा संगीत निखिल विनय का है।

सैतान खाड़ी से मोनिका सुनना चाहती है फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत। गायक कलाकार है लता मंगेशकर और कुमार सानू। रविंद्र रावल के बोल को संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

फिल्म बजरंगी भाईजान के गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजा है नया गांव से रितिका, श्वेता और मनोज ने। गायक है इमरान अजीज मैन, कौसर मुनीर का गीत है तथा संगीत प्रीतम का है।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Heard just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D. Keshav Kumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, P.V. Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्य

0: मंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
1: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यानची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
3: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद

0: त्योहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार।

0: बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में वर्षा होगी। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते अंडमान तथा निकोबार तटों पर मौसम अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मई तक समुद्र में ना जाएं। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय दोपहर के 2:31 हो चुके हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हमसफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcin.

श्रोताओं, आज हमने अपने इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने शामिल किए उनके नाम हैं सिर्फ तुम, रंग, जीत, मोहरा, मिशन कश्मीर, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, जीरो और क्रिमिनल। हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगाहर्ट्स पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। 3:30 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम।

कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त राजेश्वरी। कार्यक्रम का आगाज करते हैं, मुबारक हो तुम्हें ये खुशियों का जमाना, हर दिन बने तुम्हारी हंसी का तराना। दुआ है हर ख्वाब पूरा हो तुम्हारा, महके जीवन जैसे फूलों का आशियाना।

मुबारक हो तुम्हें ये प्यारी सी बहार, हर पल मिले तुम्हें अपनों का प्यार, गम की परछाई भी पास ना आए, खुशियों से भर जाए तुम्हारा।

मुबारक हो तुम्हें हर जीत की राह, चमकती रहे सदा किस्मत की चाह, होठों पर रहे हमेशा प्यारी मुस्कान, दिल में बसी रहे मोहब्बत की पनाह।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मंजी रोखर हमांग इंग्रे तका इनगम मीटिंग वे 438.6 मीटर हेकिंगम 684 किलोहर्ट्स लिखते हैं आंग इन रमांगलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्गी निकोबारी प्रोग्राम दहांग।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: मिनका तलून ही इंगी हरा मिनका तलून निप कैंडिडेट्स तो आहा कप गम DL8 कोर्सेस तनेट समय इनक पन एलगम डॉक्टर SR डाइट इकेरा जर्मा इनगम एकेडमिक

हाय दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। पर्यावरण के गुण और विशेषता, ये तो सामान्यकृत या स्थानीय, क्योंकि वे मनुष्य और अन्य जीवों पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता एक सामान्य शब्द है जो इसका उल्लेख कर सकता है। हवा और पानी की शुद्धता या प्रदूषण, शोर, खुली जगह तक पहुंच और इमारतों के दृश्य प्रभाव जैसी विभिन्न विशेषताएं और संभावित प्रभाव जो ऐसी विशेषताओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पर्यावरण की स्थिति मानव स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन के अन्य पहलुओं का प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के लिए संपत्ति की कीमतों पर प्रभाव पड़ने से, जो बदले में किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता को एक सार्वजनिक वस्तु माना जाता है जिसका सभी को समान मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस आधार से शुरू होता है कि निजी संपत्ति के अधिकारों को पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य और या निजी संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कई संशोधित पर्यावरणीय कारक जैसे कि बाहरी वायु प्रदूषण, घरेलू वायु प्रदूषण, पीने के पानी का संदूषण, खतरनाक सामग्रियों के व्यावसायिक जोखिम, सीसा जोखिम और निर्मित वातावरण जो शारीरिक गतिविधि को हतोत्साहित करते हैं, पुरानी बीमारी के जोखिम और अनुभव को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रदूषित पर्यावरण न सिर्फ गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है बल्कि जान भी ले रहा है। साथ ही जाने कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं। कुछ वक्त पहले आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे शामिल है। इस जानकारी के आधार पर ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जहर बनता जा रहा है। आज हवा से लेकर पानी, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सभी चीजें प्रदूषित हो गई है और कई तरह की बीमारियों का घर बन गया है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से न सिर्फ सांस संबंधी बीमारी होती है बल्कि ये मृत्यु को भी बुलावा देती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं।

हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। जब वायु में प्रदूषित तत्वों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो सांस लेने में परेशानी के अलावा आंखों में जलन और खुजली होने लगती है। आस्थमा के अलावा सांस संबंधी कई बीमारियां पैदा हो जाती है। आज लोग टेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के चपेट में आ गए हैं, जिसका जन्मदाता वायु प्रदूषण है। हाल ही में आई एक स्टडी के अनुसार यातायात संबंधी प्रदूषण की वजह से बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह कई तरह के मानसिक विकारों को जन्म देता है। वायु के प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य है फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला हवा, SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सीसा और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। पर्यावरण को प्रदूषित करने में कूड़ा कचरा भी अहम भूमिका निभाती है। जगह जगह कूड़ा जलाया जाना और फेंकने से कई हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं और स्वच्छ हवा के साथ मिलकर उसे जहरीला बना देता है। जिस तरह स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह साफ पानी की भी जरूरत होती है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज यही जल कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसकी वजह है पानी का प्रदूषित होना। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में बहा दिया जाता है। गंदे नालों से निकलने वाला पानी नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित बना देता है। यही प्रदूषित पानी डायरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार तो कुछ नियम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अपने स्तर पर भी हम कुछ कदम उठाना चाहिए, जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में डालें। फल, सब्जियां, ऐसी चीजें जो रिसाइकिल हो सके उन्हें हरे कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच, पॉलिथीन जैसी चीजें नीले रंग के कूड़ेदान में डालें। घर के अंदर का प्रदूषण कम करने के लिए बहुत काम आएंगे ये टिप्स, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। अपने वाहनों के समय समय पर प्रदूषण संबंधी जांच करवाएं और सर्विसिंग भी टाइम पर करवाएं। ऐसे सामानों का इस्तेमाल करें जो रीयूजेबल हो, यानी जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। जब भी कमरे या घर से बाहर निकलते सभी लाइट और पंखे बंद कर दें। अगर आसपास ही किसी मार्केट या अन्य जगह पर जाना हो तो कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर वॉक करके जाएं। गाड़ी, घर या अन्य चीजों की साफ सफाई के लिए खतरनाक केमिकल आधारित उत्पादों की जगह इको फ्रेंडली उत्पाद इस्तेमाल करें। छोटी छोटी ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बचाव, जितना हो उतना ही करंट का इस्तेमाल करना, यूज करने के तुरंत बाद बिजली को बंद करना। परिवार के सभी सदस्य एक बार ही मिलकर खाने से कई लाभ है, जैसे जितना कंजम्पशन है उतना ही खाना बनता है, बार बार गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाएंगे तो डाइनिंग टेबल पर फैमिली बॉन्डिंग भी हो जाता है। अन्य कमरों में लाइट और फैन बंद करें। पानी की बचत करें। वॉश बेसिन में ज्यादा पानी वेस्ट न करिएगा। किचन से सब्जी फल धोने के बाद जो पानी वेस्ट रहता है उसे अपने पौधों में डालें। किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। थोड़ा ही सही, घर पर कुछ न कुछ जरूर उगाएं। हो सका तो कुछ ज्यादा भी उगा सकते हैं। आपके पास अगर जगह और टाइम हो तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो आसानी से उगे उसे भी लगाएं, और इससे आप बार बार आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हरा धनिया उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं और पालक भी घर पर ही उगा सकते हैं। टमाटर, बैंगन, टिंडा, ये सब आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ टिप्स एनवायरमेंटल क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले लम्हे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedback amc1@gmail.com।

0: feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है शाम के 4:40। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल में कृषकों के लिए कार्यक्रम होगा। बंगला में 5:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा चिरंतोनी। संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में नमूना घर की लुसियाना कुजूर से बातचीत होगी। विषय रहेगा नारियल सुपारी बागान। महफिल कव्वाली कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:30 पर। मौसम और जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे 7:15 पर। 7:20 पर कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवावाणी के तहत 7:30 पर पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरवगान। रात 10 बजे कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा बैगिंग विधि से

6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा शांति शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। वतन के गीत आप सुनेंगे 6:40 पर। देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का समय रहेगा 7:15 पर, जबकि FM 100.9 MHz पर कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे कंवल सिद्धू और जगजीत सिंह। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा कल सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गार्गी सिद्धार्थ का गायन आप सुनेंगे। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स का समय रहेगा कल सुबह 10:00। कल दिन के 11:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे परवीन सभा और साथी। 1:30 पर कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर कार्यक्रम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स। 3:30 पर कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 5:00 तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप एक ही श्रोता के पसंद के गीत सुनेंगे। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में राजा राममोहन रॉय पर वार्ता सुनेंगे। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर अमल कांत रॉय से बातचीत होगी, विषय रहेगा मुर्गियों में टीकाकरण। साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंगिणी आप सुनेंगे 6:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 6:45। 6:55 पर हम बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवानी के तहत फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात 8:00। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरव गान। रात 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त रात 10:00 FM 100.9 MHz पर विविध भारतीय मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है 4:45। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम में सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं दिल परदेसी हो गया फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में। इसे लिखा है उषा खन्ना ने और संगीत दिया है सावन।

श्रीराम और शिल्पा राव के युगल स्वरों में इस गीत को रचा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन तैयार किया है प्रीतम ने, फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।

समीर के शब्दों को सुर में पिरोया है हिमेश रेशमिया ने। शान, कृष्णा और आकृति के आवाजों में फिल्म का नाम है वेलकम।

0: वेलकम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, पेश हैं तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम वणक्कम नेयर्गले।

श्रोताओं, ये था तमिल कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बंगला कार्यक्रम।

0: শ্রোতা বন্ধুরা, আজকের বাংলা অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। সঙ্গে ছিলাম আপনাদের প্রিয় বন্ধু সুজাতা। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন।
1: श्रोताओं, ये था बंगला कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है किसानों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को आंचल का
1: और शांता का
0: नमस्कार। किसान साथियों, कभी कभी सरलता ही उस समझ की चाबी होती है जिसे हम अक्सर कठिन मानते हैं। मतलब ये, जब हम चीजों को सहज और सीधा रखते हैं तो गूढ़ बातें भी स्पष्ट हो जाती हैं।
1: आंचल, इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल शांता। वैसे शांता, आज हमारे मुसलमान भाई बहन मना रहे हैं बकरी ईद, और हम अपने किसान साथियों को बकरी ईद यानी ईद उल अजहा या ईद ए कुर्बान की ढेरों बधाइयां देते हैं। वैसे बकरी ईद इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र और प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो मुख्य रूप से त्याग, बलिदान और अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। हम सभी श्रोताओं को बकरी ईद की ढेरों बधाइयां देते हुए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को
1: और अपने किसान साथियों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। किसान साथियों, हमारा आज का प्रश्न है, बीजोपचार के बाद बोने से पहले बीजों को धूप में सुखाना चाहिए या छांव में, ये आपको बताना है। आंचल, प्रश्न एक बार फिर दोहरा दो।
0: बिल्कुल शांता। बीजोपचार के बाद बोने से पहले बीजों को धूप में सुखाना चाहिए या छांव में, साथियों ये है आज का प्रश्न।
1: साथियों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना,
3: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर

0: प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आचल, अब हम अपने किसान भाइयों से थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं वीर सावरकर जयंती पर। किसान भाइयों, आइए बात कर लेते हैं वीर सावरकर जयंती के बारे में। वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती हर वर्ष 28 मई को मनाई जाती है। इस दिन को उनके महान स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, समाज सुधार और मातृभूमि के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। सावरकर जी के जीवन से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर गांव में इनका जन्म हुआ था। क्रांतिकारी संगठन उन्होंने 1899 में मित्र मेला, जो बाद में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बना और 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सजा की बात करें तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के कारण उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में दोहरे आजीवन कारावास, काले पानी की सजा की यातनाएं भी झेलनी पड़ी। विचारधारा के तहत वे एक महान लेखक और विचारक थे, जिन्होंने 1923 में हिंदुत्व यानी हिंदू कौन है नामक प्रभावशाली पुस्तक भी लिखी थी। साथियों, इनके जीवन से हमें एक प्रेरणा मिलती है। इसका उद्देश्य देशभक्ति और समुदाय उन्मुख गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना है। ये कार्यक्रम युवा नागरिकों में देशभक्ति, युवा भागीदारी, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये सामुदायिक एकता और राष्ट्र निर्माण की पहलुओं पर सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है और हर वर्ष इस दिवस को हम मनाते हैं ताकि युवाओं को इनके जीवन से कुछ प्रेरणा मिल सके।
4: किसान साथियों, अभी आपने वीर सावरकर जयंती के संदर्भ में ये छोटी सी जानकारी हासिल की।
3: साथियों, आइए पुनः लौटते हैं कार्यक्रम की तरफ और आपकी मुलाकात करवाते हैं नमूना घर की रहने वाली एक महिला कृषक, जो कि नारियल एवं सुपारी के बागान करती हैं। उनसे मिलते हैं श्रीमती लुसियाना कुजूर और सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत।
4: किसान साथियों, आइए आपको मिलवाते हैं लुसियाना कुजूर जी से। तो लुसियाना जी, पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप कृषि से जुड़े क्या कार्य करती हैं।
5: कृषि में बोलने से थोड़ा बड़ा छोटा जगह में मतलब केला पेड़ है, नारियल, सुपारी पेड़,
4: मतलब एक ही जगह में एक ही छोटे से एरिया में। हाँ। आप केला पेड़, नारियल, सुपारी ये सब आप उगाते हैं, सब एक ही जगह एक ही एरिया में। हाँ। उसको कैसे सेट करें बताइए।
5: तो इस तरह मतलब सुपारी गाड़ के बीच बीच में नारियल पेड़ भी डाले हैं
4: आपने। हाँ। थोड़े थोड़े गैप में डाला। हाँ, है गेप और उसी गैप में नारियल पेड़ भी है
5: जी।
4: और जो खाली स्थान है उसमें आपने केला पेड़
5: जी,
4: डाला
5: जी,
4: है
5: जी,
4: है ना
5: जी।
4: चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने स्थान का बहुत अच्छा उपयोग आपने किया है। तो कैसे करते हैं बताइए, आपने कब से इसकी शुरुआत की, कितने साल हो गए आपको?
5: बहुत साल हो गया, छोटा सा जगह है, बड़ा जगह नहीं है, पर अपना जगह नहीं है, जगह पकड़ कर रखे हैं। उसी में थोड़ा बहुत अपना जमीन में करके रखे हैं
4: जी जी
5: जी
4: जी। तो अभी देखिए, सुपारी और नारियल को तो आपको ज्यादा देखने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन प्राय केले के पेड़ है इनको भी आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग में जब इनको उगाया जाता है ना, तब इनका देख रेख किया जाता है ना?
5: जी हाँ, देख रेख करना पड़ता है। क्यों बोल सकते, उसको गाड़ के थोड़ा बड़ा होने तक को उसको अच्छा से मट्टी चढ़ाना, सब में सुपारी पेड़ हो, नारियल पेड़ हो, केला पेड़ भी।
4: तो जमीन की तैयारी कैसे करते हैं थोड़ा बता दीजिए।
5: अच्छे से गड्ढा बना लेते हैं, खाद वगैरह थोड़ा डाल लेते
4: हैं,
5: उसका बाद में मिट्टी डालते, पानी तो इतना डालते नहीं है
4: जी।
5: बारिश का पानी सब उसी में हो जाता
4: जी जी। बारिश के मौसम में ही आप नए पौध जो है नारियल के और सुपारी के आप गाड़ते हैं। और केले कैसे करते हैं बताइए।
5: केले को वही एक ही बार बारिश टाइम ही हम लोग उसमें मिट्टी उट्टी चढ़ा लेते
4: जी,
5: फिर उसका पत्ती अगर सब सूखा वाला हटाते जाते मिट्टी चढ़ा के, फिर उसका फूल आने से

0: उसका फल गोद भरने के लिए उसका फूल भी काट लेते हैं हम लोग, फूल काट के उसका सब्जी भी बना लेते हैं, केला खाने के लिए भी मिल जाता है।
1: उसको बिक्री कैसे करते हैं बताइए आप। जैसे पहले तो हम नारियल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, देखिए नारियल को आपको तोड़वाना पड़ता है, तो आपके घर से कोई उसको तोड़ता है या फिर आप बाहर से किसी को बुलाकर उससे को तोड़वाते हैं?
0: जी पहले तो मतलब सुपारी नारियल वाले लोग आते थे घर घर में से, वो लोग बहुत कम रेट में देने मांगते ना, तो हम लोग भी सोचे कि छोड़ो उस लोगों को देने का जगह में हम लोग अपना मेहनत करेंगे और अपने दो पैसा मिलेगा, या तो बम्बू लंबा बम्बू लेके तोड़ लेते हैं जी। फिर उसको हम घर का ही हम लोग छील लेते हैं, छील के गाड़ी में लेके चले जाते हैं
1: जी। तो छीलने का कोई इक्विपमेंट आपने रखा है कि जो आमतौर पर जो दांव वगैरह है उसी से आप?
0: दांव या तो ये मतलब क्या था सबल के सबल लेना
1: जी, उसी से आप लोग कर लेते हैं, अवेलेबल जो टूल है आप उसी को यूज कर लेते हैं। तो चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अब सुपारी की बात करेंगे, सुपारी भी वो तो अपने से गिरता रहता है, आपको उसको टाइमली उठाना पड़ता है ना, कलेक्ट करना है और उसको सुखाना है। तो देखिए नारियल छीलना और सुपारी छीलने में क्या दिक्कत आपने देखा है, आपने पाया है कि तकलीफ क्या है?
0: थोड़ा नारियल छीलने में दिक्कत है, एक्सपीरियंस नहीं है ना हम लोगों को छीलने का, तो थोड़ा हम लोगों को मुश्किल होता है इससे। तो ये घरी का लड़का मेरा बेटा है वो छील लेता है
1: जी। नारियल छीलना मुश्किल होता है, सुपारी छीलने में आराम है।
0: हाँ जी।
1: चलो ये बात अच्छी है कि आप लोग अपने घर में छीलते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लेबर कॉस्ट है उसको आप बचाने की कोशिश करते हैं और आप खुद छील कर खुद काम करके, इससे आप क्या कर रहे हैं कि कुछ पैसे आप बचत कर पा रहे हैं। तो वो कौन सी बहुत सारी चीजें आपने उगाई है बता दीजिए?
0: अभी बोलने से सब्जी उगाती है जी, अपना खाने के लिए।
1: हाँ,
0: छोटा सा बगीचा बनाई है, उसमें मुर्गी बकरी बिल्कुल नहीं घुसना इस तरह।
1: आपने मतलब उसको बहुत अच्छी तरह से उसका फेंसिंग किया हुआ है, बाड़ा लगाया है ताकि आपके जो पौधे हैं उनको ये मुर्गी आके नुकसान नहीं पहुंचाए। हाँ।
0: उसमें मरसा भाजी, मूली भाजी इस तरह थोड़ा थोड़ा लगाई थी, वो एक बार का खत्म हो गया
1: जी।
0: फिर अभी थोड़ा लुबिया है
1: जी,
0: फिर लौकी डाल कर रखी है, अभी वो भी अच्छा बेल निकल गया, फल निकल लायक होता है अभी, कुमड़ा भी डाल कर रखी
1: जी। वो भी अभी आप इतने छोटे से, आपने कहा कि छोटा सा जमीन है लेकिन आपको इतनी सारी चीजें आप उगा रहे हैं
0: जी, है ऐसी मतलब कैसा लगे, हम जगह देख देख के सारा चीज उगा लेते हैं।
1: अच्छा,
0: मिर्ची पेड़ भी अभी अभी पूरा फलता है
1: जी जी जी,
0: पपीता पेड़ है
1: जी। तो देखिए इतनी सारी चीजें आप उगाती है ना, तो कौन से ऐसे सब्जी में आपको मुनाफा ज्यादा होता है या आपको फायदा है उगाने में, आप उससे फायदा
0: तो
1: उठा सकती हैं?
0: मतलब बचपन से हमको ना पूरा शौक है ये करने के लिए
1: जी जी,
0: हमको पूरा मेहनत करने का दिल होता है
1: जी जी,
0: कोई चीज को थोड़ा हरा भरा देखना वो पसंद है मेरे को।
1: तो आप इसको बेचने के लिए नहीं करती हैं?
0: बेचने के लिए बहुत कम
1: जी,
0: अपना खाने के लिए और अड़ोस पड़ोस में जो ज्यादा होता तो दे देते हैं।
1: अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है, अपने लिए भी उगाते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि मेन आप जो उगाती हैं वो बेचने के लिए जो आप उगाती हैं वो आपके सुपारी, नारियल और केला का है ना। तो
0: हाँ,
1: केला
0: जी,
1: जो
0: जी।
1: पेड़ है वो आपके पास कितना होगा या कैसे आपको उससे मुनाफा होता है?
0: केला में भी बिक्री तो नहीं ही करते हम लोग, सब्जी केला ज्यादा होने से थोड़ा उसको बिक्री कर सकते, नहीं तो वो भी अगल बगल ही देखे खत्म करते हैं
1: जी जी
0: जी। फिर ये खाने वाला केला बोलने से चीना केला है
1: जी
0: जी,
1: तो चीना केला का डिमांड है यहाँ पे
0: अभी बहुत कम, दुकान में तो रेट ही है। हाँ। हम लोग अभी जाएगा खरीदने के लिए तो रेट रहेगा, लेकिन हम लोग बिक्री करे
1: वो रेट नहीं रहता, आपको सही से रेट मतलब नहीं मिल पाता
0: इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं देते।
1: तो यहाँ का जो मार्केट लगता है नमूना घर में, इसका आप फायदा उठाती हैं? कभी बिक्री की है
0: नहीं,
1: मार्केट जाके?
0: नहीं, अभी तो बहुत कम किए ही नहीं है, हम नहीं बिक्री कर रहे हैं, खाली अपना भर खाने के लिए हो जाता
1: जी। और कोई ऐसे आप बकरी पालन मुर्गी पालन करती हैं?
0: हाँ।
1: क्या करती हैं बताइए?
0: पहले तो गाय भी था
1: जी,
0: गाय था उसे भी बहुत फायदा मिला मेरे को
1: जी जी,
0: फिर बकरी है मुर्गी है।
1: पहले गाय था मतलब आपके पास कितने गाय थे?
0: एक ही गाय था।
1: अच्छा,
0: एक ही गाय था, उसमें भी बहुत हमको आमदनी मिला
1: जी
0: जी। मैं बछड़ा

0: सारा उसका बच्चा जो हुआ खाली बछड़ा हुआ उसको सारा बिक्री करते गई।
1: तो अभी आपके पास क्या है?
0: वो गाय अभी खत्म ही हो गया।
1: वो गाय नहीं है, और गाय के अलावा आपके पास अभी मुर्गी भी है ना?
0: बकरी है और मुर्गी है।
1: तो बकरी कितने हैं और मुर्गी कितने हैं?
0: मुर्गी तो अभी रखा है लेकिन बहुत कम
1: जी।
0: खाली अंडा देने वाला मुर्गी ज्यादा है
1: जी।
0: और बच्चा जो होता है ना वो बिल्कुल पचता नहीं है।
1: जी जी
0: सर चूहा खा लेता, मेंढक है, हरा मेंढक है वो सब भी खा लेता।
1: अच्छा,
0: चूहा खाएगा नहीं तो ये सब नुकसान करता है। इसका पीछे हम लोग ना वो मुर्गी के पीछे हो नहीं सकता।
1: जी, तो अंडा आप बिक्री करती हैं फिर?
0: जी बहुत बहुत करिए अंडा, फिर घर का बच्चा लोग भी खा लेते हैं अंडा।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी।
1: और बकरी क्या कैसे आप पालती हैं बताइए?
0: बकरी को उसको थोड़ा मेहनत मांगता
1: जी,
0: बकरी पालने के लिए। उसको बारिश टाइम में बहुत तकलीफ लगता है, थोड़ा ठीक ही है।
1: जी जी।
0: बारिश टाइम में बोलने से ज्यादा बारिश हो जाने से भी उसको भीग भीग के चरना पड़ता, फिर उसको पूरा ठंडा पकड़ेगा, फिर उसके लिए धुआं करो, आगे जला के सारा देना, फिर सर्दी खांसी होने से ही क्या करेगा। हम लोग पूरा वही देखभाल करते और थोड़ा मोड़ा कुछ अपना दवाई जानती है और क्या हम कर लेती।
1: जी, तो देखिए आपने कहा कि आप बकरी पालती हैं, मुर्गी भी हैं, साथ में आप कृषि कार्य भी करती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं सुबह से दिन भर से आप कैसे सबकी देख रेख करती हैं बताइए?
0: हम कोशिश करती है, बहुत बहुत कोशिश करती है। हम सुबह 4 बजे उठ जाती
1: जी,
0: फिर किचन का काम करेगी, किचन का काम करके फिर बाहर का बच्चा लोग सब निकल जाएंगे, उसके लिए टिफिन भरना सब कुछ करना मेरा ऊपर में है।
1: जी।
0: उस लोग बाहर चले जाएगा, फिर हम अपना जो भी कपड़ा उपड़ा धोना है कुछ करना है वो हम अपना कर लेती, फिर नाश्ता पानी होने के बाद बकरी को लेके चली जाती
1: जी,
0: फिर बकरी उधर में चली जाएगी अभी 9 या तो 10:30 बजे आसपास हम निकल जाती।
1: जी जी।
0: निकल जाती उधरी में हम बाल्टी उल्टी पकड़ के, अभी तो दुक्का लग गया, उधरी में पानी लेके उधरी में पानी पिलाती
1: जी
0: घर से लेके। 3-4 बजे आएगी घर बकरी का साथ।
1: अच्छा,
0: फिर उस लोग को और पानी देना, ये थोड़ा देर उस लोग को थोड़ा गेहूँ देना।
1: बिल्कुल, तो मतलब आपका दिन भर बकरियों की देखरेख, मुर्गियों की देखरेख और इसमें चला जाता है। तो चलिए लुसिया जी, आपसे इतनी सारी बातें हुई, आपने बताया कि कैसे आप मेहनत करती हैं और मेहनत करके आप अपना कृषि कार्य करके गुजर बसर करने की कोशिश करती हैं। तो चलिए, आपने बहुत सारी बातें बताई, आपको धन्यवाद।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने नमूना घर की रहने वाली महिला कृषक श्रीमती लुसियाना कुजूर, जो कि नारियल एवं सुपारी के बागान करती हैं, उनके साथ की गई ये बातचीत सुनी।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: आजल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम कार्यक्रम में अपने किसान भाइयों को एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

किसान साथियों, गीत का आनंद तो आपने ले लिया। चलिए अब आपको दे देते हैं जानकारी, और जानकारी का विषय है पावर टिलर की उपयोगिता। पावर टिलर की उपयोगिता। किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ चर्चा करें पावर टिलर की उपयोगिता के संदर्भ में। हमारे देश में भी पिछले कुछ वर्षों से पावर टिलर काफी प्रचलित हुआ है और आप इसकी उपयोगिता के बारे में समझने लगे हैं। पावर टिलर सचमुच में किसान का एक बहुत बड़ा दोस्त होता है। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि सामान्य व्यक्ति द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त करके पावर टिलर को चलाया जा सकता है, अर्थात इसमें किसी विशेष गहन प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। दूसरा यह कि पावर टिलर आकार एवं शक्ति में छोटा होने के कारण अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है और इस प्रकार ऊर्जा का नुकसान बहुत कम होता है। तीसरी बात यह है कि पावर टिलर चूंकि छोटा होता है और कम शक्ति का होता है, इस कारण ट्रैक्टर की अपेक्षा यह सस्ता भी पड़ता है। आकार में छोटा होने के कारण इसे छोटे आकार के खेतों में बिना किसी कठिनाई के आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। पहाड़ी एवं ढालू जमीन में बनाए गए सीढ़ीनुमा खेतों पर भी पावर टिलर का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है, जबकि इन जगहों पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल लगभग नहीं हो सकता। अब जब हम अपने द्वीपों की बात करते हैं तो यहाँ पर पावर टिलर की उपयोगिता और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ढालू जमीन में खेत छोटे छोटे आकारों के हैं। छोटे छोटे आकार के खेत होने के कारण इनमें ट्रैक्टर का उपयोग कुशलतापूर्वक हम नहीं कर पाते और इसमें कई प्रकार की कठिनाइयों का भी हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ यह भी सच है कि अधिक वर्षा के कारण मिट्टी भारी हो जाने से कमजोर पशु भी इनमें ठीक से काम नहीं कर पाते। ऐसे में पावर टिलर यहाँ पर खेती के काम में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। पावर टिलर 6.5 से 12 अश्व शक्ति का दो पहियों वाला डीजल से चलने वाला इंजन यंत्र है, जिसमें हल, हैरो, क्लीवेटर, ट्रॉली आदि लगाकर विभिन्न कृषि कार्य किए जा सकते हैं। धान की खेती के लिए खेत तैयार करने हेतु पावर टिलर बहुत ही उपयोगी है। आपने देखा होगा कि छोटे खेतों में बार बार ट्रैक्टर चलाने से पहियों के वहीं घूमने से गड्ढे पड़ जाते हैं और प्रायः कीचड़ में फंस जाते हैं, किंतु पावर टिलर का भार कम होने तथा रोटरी टिलर को आगे की दिशा में ढकेलने की प्रवृत्ति के कारण कीचड़ बनाने वाले खेत में इसके फंसने की संभावना कम हो जाती है। एक हेक्टर खेत में रोटावेटर, क्लीवेटर आदि चलाने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं, जबकि सूखी जुताई में 11 से 15 घंटे का समय लगता है। पावर टिलर द्वारा विभिन्न दवाओं का छिड़काव एक अन्य विशेष यंत्र की सहायता से 500 लीटर प्रति घंटे की दर से किया जाता है।

0: सकता है। इस तरह सामान्यतः एक घंटे में एक हेक्टर भूमि का छिड़काव हो सकता है। फसल की कटाई, मड़ाई एवं ओसाई भी हम पावर टिलर की सहायता से कर सकते हैं। चारे की मशीन चलाना, पंप से पानी खींचना, इन कामों को भी हम पावर टिलर की मदद से कर सकते हैं। पावर टिलर में ट्रॉली लगाकर 10 क्विंटल तक सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों, हम देख सकते हैं कि पावर टिलर खेती बाड़ी में काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। किसान भाइयों, हम खेती बाड़ी में आर्थिकी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जहाँ खरीदने में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, वहीं ट्रैक्टर की मरम्मत और देखभाल में भी ज़्यादा खर्च होता है, जबकि पावर टिलर इसकी तुलना में कम खर्च पर हमें मिल जाता है और इसकी देखभाल में खर्च भी कम होता है। अतः हम आपसे कहेंगे कि हमारे इन द्वीपों की परिस्थितियों में पावर टिलर का उपयोग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। किसान साथियों, अभी आपने पावर टिलर की उपयोगिता के संदर्भ में ये छोटी सी जानकारी हासिल की।
1: आंचल, अब समय हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने अपने किसान साथियों से पूछा था कि बीजोपचार के बाद बोने से पहले बीजों को धूप में सुखाना चाहिए या छांव में। इस प्रश्न का सही उत्तर बता दो।
0: बिल्कुल शांता, किसान साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है बीजोपचार के बाद बोने से पहले बीजों को छांव में सुखाना चाहिए।
1: उम्मीद करते हैं किसान साथियों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी। साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आंचल, हम अपने किसान भाइयों से ले लेते हैं अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम महफिल कवाली।

श्रोताओं, महफिल कवाली कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों उम्र 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है।

वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों उम्र 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई। महफिल कवाली कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनिए ये कवाली।

अभी आप महफिल एक कव्वाली कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, थोड़ी देर के बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कल सवेरे 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा बैगिंग विधि से आम की तुड़ाई।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी हितधारकों से कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। और कला एवं संस्कृति विभाग द्वीप समूह में थिएटर को बढ़ावा देने के लिए थिएटर कार्यशाला का आयोजन करेगा।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से समाधान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ समाप्त होगा। इसका उद्देश्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का सहमति आधारित समाधान तंत्रों के माध्यम से निपटा

परंपरा सुनिश्चित करना है। सभी हितधारकों से कहा गया है कि वे अपने विवादों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत में उपस्थित रहें। इच्छुक पक्ष निर्धारित गूगल फॉर्म भरकर अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए समाधान समारोह विशेष लोक अदालत के प्रभारी से संपर्क किया जा सकता है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की ओर से कल शाम 5:30 बजे से योग और समग्र देखभाल के माध्यम से नशा मुक्ति विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण किया जाएगा। आयुष अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी योग और प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर नंदिनी दर्शकों के सवालों के जवाब देंगी। दर्शक फोन नंबर 2456662 या 2447445 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, अपशिष्ट प्रबंधन और थिएटर कार्यशाला। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक और अन्य कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रबंधन और सीमा पार संचलन नियम 2016 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत खतरनाक कचरे को उत्पन्न करने वाले, उसका रखरखाव करने वाले, संग्रहकर्ता, प्राप्तकर्ता, प्रसंस्करणकर्ता और परिवहनकर्ता को कचरे का उचित भंडारण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, उपयोग और निपटान सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऐसी सभी संस्थाओं को नियमों के तहत प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही जल और वायु अधिनियमों के तहत स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति प्राप्त करना भी अनिवार्य है। द्वीप समूह के भीतर ऐसी गतिविधियों में लगी सभी इकाइयों को ANPCC के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी हितधारकों से निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। कला एवं संस्कृति विभाग द्वीपों के युवाओं और आम जनता के बीच थिएटर को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास के तहत जून माह में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से 1 महीने तक चलने वाली थिएटर कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य रचनात्मकता को प्रेरित करना, अनुशासन की भावना जगाना और प्रदर्शन कलाओं के प्रति सराहना विकसित करना है, जिसमें द्वीपों की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हो सके। इस संबंध में द्वीपों के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यशाला में केवल 30 लोगों को ही शामिल किया जाएगा और चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सेल्युलर जेल परिसर स्थित कला एवं संस्कृति विभाग से संपर्क किया जा सकता है। उद्योग निदेशालय की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 1 वर्षीय पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें सिलाई और वस्त्र निर्माण, बेंत और बास्त हस्तशिल्प, बढ़ईगिरी और सामान्य इंजीनियरिंग जैसे विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। डिगलीपुर केंद्र सिलाई और वस्त्र निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और बढ़ईगिरी में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। लिटिल अंडमान में सामान्य इंजीनियरिंग और बढ़ईगिरी में प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, जबकि कार निकोबार में सिलाई और वस्त्र निर्माण, बढ़ईगिरी, जूट उत्पाद और सामान्य इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी आयु 15 से 45 वर्ष के बीच हो तथा द्वीप समूह का स्थानीय प्रमाण पत्र धारक हो, वे इसके लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को ₹1,000 का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक संबंधित उद्योग संवर्धन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

0: और अब मौसम। द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर आज हल्की वर्षा हुई। आज शाम 5:30 बजे तक वायुसेना केंद्र कार्निकोबार में 7.2 मिलीमीटर, कार्निकोबार में 7, श्री विजयपुरम में 4.4, मायाबंदर और ननकौड़ी में 3-3 और लॉन्ग आइलैंड में 2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगले 6 दिनों के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को सोमवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी हितधारकों से कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है और कला एवं संस्कृति विभाग द्वीप समूह में थिएटर को बढ़ावा देने के लिए थिएटर कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम और जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों को सूचित किया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वह 31 मई तक समुद्र में न जाए। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर बाद 1 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा और उसकी वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और वापसी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा।

एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोट्टा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और शनिवार 30 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

ये थे जलियानों की यात्रा कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।
1: समय हुआ है 7:20। पेश हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सोनू निगम, अरविंदर सिंह और स्नेहा पंत की आवाजों में जलीस राशिद की रचना के साथ। संगीत दिया है साजिद माजिद ने और फिल्म का नाम है तुमको ना भूल पाएंगे।

हीरो हिंदुस्तानी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस माह का चौथा गुरुवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, जब दूर दूर तक संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तब एक मधुर आवाज लोगों के घरों तक समाचार, संगीत, ज्ञान और संस्कृति पहुंचाती थी। वह आवाज थी आकाशवाणी की। जी हाँ दोस्तों, स्वर जो समय के साथ भी अमर रहा। दोस्तों, रेडियो केवल एक यंत्र नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और देश की धड़कनों को जोड़ने वाला माध्यम रहा है। बदलते समय, तकनीक और मनोरंजन के अनेक साधनों के बावजूद आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता और लोकप्रियता को बनाए रखा है। दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होना केवल एक संस्थान की उपलब्धि नहीं बल्कि भारतीय जनसंचार, संस्कृति और लोकतंत्र की यात्रा का गौरवपूर्ण अध्याय है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आइए आपको सुनवाते हैं दीपक कुमार सिंह द्वारा यह रूपक आकाशवाणी के 90 वर्ष स्वर से संस्कृति तक की यात्रा।
2: कुछ आवाजें उम्र नहीं पूछती, बस दिल में घर कर जाती हैं। ऐसी ही एक आवाज है आकाशवाणी की। यह आकाशवाणी है। अब आप समाचार सुनिए, कितनी सरल, कितनी आत्मीय और कितनी भरोसेमंद। दोस्तों, जब हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था, उनकी गुलामी में था, तब बंबई में 23 जुलाई 1927 को एक आवाज आज़ाद हो रही थी। दोस्तों, जब शब्दों की जरिए मन से मन की यात्रा शुरू हुई, वह पहला रेडियो प्रसारण तब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कहा गया। और फिर आया वर्ष 1936, जहां नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। इसे हिंदी में आकाशवाणी

जाने लगा। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि यह भारत की विविधताओं को एक मंच पर लाने का एक प्रयास था। आज आकाशवाणी देश के हर कोने तक फैला हुआ है, जिसमें 400 से अधिक प्रसारण केंद्र हैं। आकाशवाणी केवल सूचना का माध्यम नहीं रहा बल्कि यह भावनाओं का पुल भी रहा है। दशकों तक सुबह की शुरुआत भजन, शास्त्रीय संगीत, समाचार और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ होती रही। पुराने समय में जब टेलीविजन हर घर में नहीं था, तब रेडियो ही मनोरंजन, शिक्षा और जागरूकता का प्रमुख साधन था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब आकाशवाणी ने उस ऐतिहासिक पल को शब्दों और सुरों के माध्यम से घर घर पहुंचाया। जय हिंद के उद्घोष, पंडित नेहरू का ट्रस्ट व डिस्टिनी भाषण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज़ और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ इसी मंच से प्रसारित हुई। इन पलों ने देशवासियों के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। आकाशवाणी ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता में भी अहम भूमिका निभाई। युववाणी, कृषि दर्शन, संगीत सभा, हिंदुस्तानी संगीत, विविध भारती जैसे कार्यक्रमों ने समाज को जोड़ा। आकाशवाणी ने समय के साथ तकनीकी प्रगति को अपनाया। शॉर्ट वेव से लेकर एफएम चैनल, डिजिटल रेडियो और अब मोबाइल ऐप्स तक हर बदलाव को स्वीकार किया। आज भी आकाशवाणी समाचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, संगीत और भक्ति रस को समर्पित चैनल्स के माध्यम से अपनी सेवा दे रहा है।

इन 90 सालों में आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें नहीं दी, बल्कि कृषि से लेकर काव्य तक, सैनिक से लेकर विद्यार्थी तक समाज को शिक्षित किया, जोड़ा और जागरूक किया। किसानों के लिए कृषि दर्शन और मौसम की जानकारी, विद्यार्थियों के लिए रेडियो शिक्षा कार्यक्रम, गीत, गजल, शायरी, मनोरंजन, समाचार जिसकी सच्चाई पर देश को आज भी भरोसा है। 23 जुलाई को भारतीय प्रसारण दिवस मनाने का उद्देश्य न केवल इस ऐतिहासिक यात्रा को याद करना है, बल्कि उन सभी पत्रकारों, उद्घोषकों, तकनीशियनों और कलाकारों को श्रद्धांजलि देना भी है जिन्होंने प्रसारण के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। यह दिन हमें पत्रकारिता की नैतिकता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। एक रेडियो सेट हुआ करता था हर घर में, जिसे पूरा परिवार सुनता था। उस रेडियो सेट को ऐसे रखा जाता था जैसे वह घर का सदस्य ही हो। रेडियो पर बोलने वाले शख्स को किसी ने देखा तो नहीं था, लेकिन उससे आ रही आवाज से हर किसी का एक गहरा रिश्ता बन गया था। रेडियो की आवाज ने रिश्ते बनाए, छात्रों ने इतिहास के पाठ वहीं से सुने और सैनिकों को घर की चिट्ठियां रेडियो पर सुनाई गईं। मीलों की दूरी को जोड़े वो संवाद है रेडियो, चेहरा ना सही पर एहसास में सबसे आगे है रेडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंदुस्तान के लिए रेडियो के ज़रिए ही अंग्रेज़ों को ललकारा था। 1971 के युद्ध में रेडियो की घोषणाओं से देश एकजुट हुआ, और जब टीवी नहीं था, रेडियो ने ही लोकतंत्र के चुनाव, संसद की कार्यवाही और मौसम की चेतावनियां दी। आज तकनीक बदल गई है, रेडियो अब हाथ में नहीं, मोबाइल ऐप्स में है। FM, डिजिटल पॉडकास्ट, इंटरनेट रेडियो, सब कुछ है, लेकिन उस आवाज़ की गरिमा, गहराई और आत्मीयता अब भी वैसी ही है। आज जब टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, तब भी आकाशवाणी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में, सीमावर्ती इलाकों में और जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वहां आज भी रेडियो ही मुख्य सूचना का स्रोत है। आपातकालीन स्थितियों में भी रेडियो की महत्ता बनी रहती है। डिजिटल इंडिया के इस युग में आकाशवाणी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

स्ट्रीमिंग, मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के जरिए आकाशवाणी ने नई पीढ़ी से भी संवाद स्थापित किया। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के साथ प्रसारण को और प्रभावशाली बनाने की संभावनाएं हैं। आकाशवाणी ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और प्रचारित करने का भी कार्य किया है। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, कवि सम्मेलन, मुशायरा और लोक कथाओं का संरक्षण आकाशवाणी ने बड़े ही प्रभावशाली तरीके से किया है। रेडियो का वह दौर जब किसी गांव में एकमात्र ट्रांजिस्टर हुआ करता था, आज भी याद किया जाता है। लोग रेडियो के इर्द गिर्द बैठकर समाचार सुनते, फिल्मी गीतों पर झूमते और नाटकों से जीवन मूल्य सीखते। आकाशवाणी सचमुच में जन जन की आवाज़ बन गया था। आज का दिन श्रद्धांजलि भी है।

विरासत को सहेजने और प्रचारित करने का भी कार्य किया है। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, कवि सम्मेलन, मुशायरा और लोक कथाओं का संरक्षण आकाशवाणी ने बड़े ही प्रभावशाली तरीके से किया है। रेडियो का वह दौर जब किसी गांव में एकमात्र ट्रांजिस्टर हुआ करता था, आज भी याद किया जाता है। लोग रेडियो के इर्द गिर्द बैठकर समाचार सुनते, फिल्मी गीतों पर झूमते और नाटकों से जीवन मूल्य सीखते। आकाशवाणी सचमुच में जन जन की आवाज बन गया था। आज का दिन श्रद्धांजलि भी है और संकल्प भी है। आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष मना रहे हैं, तो यह सिर्फ इतिहास का उत्सव नहीं, यह एक राष्ट्रीय धरोहर की पुनः पुष्टि है। अगर कोई माध्यम बिना दिखे दिलों में उतरता है तो वो है रेडियो। ये आकाशवाणी है। यह वाक्य न केवल उद्घोषणा है बल्कि है भारत की आत्मा की गूंज है। रेडियो की आवाज़ में एक अपनापन होता है। उद्घोषक की आवाज़, उसकी शैली, उसका संवाद का तरीका श्रोताओं के दिल में बस जाता है। यही कारण है कि आज भी कुछ पुराने उद्घोषकों की आवाज़ सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्षों का यह सफ़र न केवल तकनीकी प्रगति की कहानी है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, भावनात्मक एकता का प्रतीक भी है। हमें इस समृद्ध इतिहास को याद करने, उसे संरक्षित करने और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने की प्रेरणा देता है। आने वाले समय में आकाशवाणी को अपनी विरासत के साथ साथ नवाचार को भी अपनाना होगा ताकि यह जन जन की आवाज़ बनकर हर दिल तक पहुंचता रहे। भारत का रेडियो, भारत का गर्व, यही आकाशवाणी की पहचान है।

आकाशवाणी के 90 वर्ष स्वर से संस्कृति तक की यात्रा। दोस्तों, अभी आप दीपक कुमार सिंह द्वारा यह रूपक सुन रहे थे। दोस्तों, भारत त्योहारों की भूमि है, जहां हर पर्व प्रेम, एकता और मानवता का संदेश देता है। आज के दिन यानी 28 मई को मनाई जा रही ईद उल अजहा यानी बकरीद एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व त्याग, समर्पण और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ईद उल अजहा लोगों को मानवता, दया और भाईचारे की भावना अपनाने की प्रेरणा देता है। पूरे देश में यह त्यौहार श्रद्धा, उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ईद उल अजहा को कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन हज़रत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति श्रद्धा और बलिदान की भावना को याद किया जाता है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था में त्याग और निस्वार्थ भावना का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ईद के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर नए वस्त्र पहनते हैं और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा करते हैं। इसके बाद लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर शुभकामनाएं देते हैं। घरों में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं और परिवार तथा मित्रों के साथ खुशियां बांटी जाती है। इस अवसर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता भी की जाती है, जिससे समाज में समानता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। दोस्तों, ईद उल अजहा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि मानवता और करुणा का संदेश देने वाला त्यौहार है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता बनाए रखने में ऐसे त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, यह पर्व केवल खुशियां मनाने का अवसर नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने और इंसानियत को अपनाने का संदेश देता है।

युववाणी के आज के इस अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और मैं लता राजनंदिनी, आपकी रेडियो दोस्त, अब चाहती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। पेश हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया है दीदार ए यार फिल्म के इस गीत के साथ, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, बोल साहिर के, और धुन तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के आवाज़ों में इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है सी रामचंद्र ने, रूठा न करो फिल्म के लिए।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनिए आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह की रचना। इसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों यानी 31 जुलाई 2026 तक असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब सुनिए हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और गायक कलाकार है लता मंगेशकर व मुकेश।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए कूली फिल्म का गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे गाया है शब्बीर कुमार व अनुराधा ने।

कूली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार और गौरव गान। पहले रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के तहत 2 पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। योग्य अधिकारियों के नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर भेजना होगा। पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय के सामने, केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। ये आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन के तिथि से 45 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक अधिकारी अग्रिम प्रति ईमेल spadmin.nia@gov.in द्वारा भी भेज सकते हैं। साथ ही डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 मई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा जा सकता है। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुए। अब सुनिए गौरव गान।

अभी आप रोजगार समाचार और गौरव गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आप रोजगार समाचार और गौरव गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर-17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देव रॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र

बाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई।

0: अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
2: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पर सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो,

0: तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे आपको, बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
0: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी लग रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ओआरएस का घोल तो हर जगह मिल जाता है तो ओआरएस का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मियां आती हैं, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी दादा दादी,

0: तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है। बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकले। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसपे से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का ले, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
0: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
1: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के रोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी, और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जा करके डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
0: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
1: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ जाता है, गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
0: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
1: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल।

0: और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोताओं इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

आते हैं। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम संदेशे आते हैं में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारे जरिए अगर आप भी अपना मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो फोन लीजिए, टाइप कीजिए गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम और पता और हमें भेजिए इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9474234000। श्रोताओं आपके संदेशों का हमें इंतज़ार रहता है। तो इसी सिलसिले में हमने आज के कार्यक्रम में सबसे पहला संदेश शामिल किया है सिप्पीघाट से अर्चना का।

धड़क फिल्म का गीत सुनवाने के संदेश हमें मिला है गारा शर्मा से तुलसी का। तुलसी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत चुना है, आनंद लीजिए आपका मनपसंद गीत।

हटबे से नैना का संदेश है, पद्मावत फिल्म से नीति मोहन का गाया नैनो वाले ने ये गीत सुनवाने का। नैना जी आनंद लीजिए आपका पसंदीदा नैनो वाले ने गाना।

कार्यक्रम के अंत में हमने शामिल किया है सिपीगाट से मनीष का पसंद, और ये सुनना चाहते हैं मिशन कश्मीर का ये गीत।

0: आते हैं।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मायाबंदर में 3 मिलीमीटर, लॉन्ग आइलैंड कार निकोबार में 2-2 मिलीमीटर, नानकवरी और कार निकोबार वायुसेना क्षेत्र में 1-1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जिन सेवाओं और मछुआरों को सूचित किया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। इस समय रात के 10:31 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल सवेरे 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28.45 हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।